शनिवार शक नंबर 340 की इस समय सुबह के 5:58 मिनट हमारी आज की प्रार्थना

послание Демки Пурпа.

चैप्टर का कार्यक्रम वंदनवार आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या अर्जन करने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को कहाँ से विद्या प्राप्त होगी और विद्यार्थी को

से थोड़ी एक में चलो चल पैतीस में से मेरा श्री राम के समान स्थान बाहर 204 सूरज सूरज कर 45 मिनट और संध्या सूरज कर 45 मिनट से आपको सुनाया गया कार्यक्रम संगीत कविता इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राज कलाकार हैं शकुंतला नरसिंह आज श्रृंखला के आगे

到地狱，那是一个家庭的第三代出生的人一百七，这可是在这个地方，上百岁的孩子都不能不晓得你是谁。

घर का शाम सुबह से तीस मैसेज सुनेगा, सुबह से पैंतीस मैसेज संध्या रंजन विशेष जयमाला करना पंकज कपूर, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा।

लक्ष्मण कहानी, इसके अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य मेरा वाचन अमर गांधी का प्रस्तुत करता है। स्वागत है। रात 8:15 से चित्र लोग रात 9 बजे से आपके लिए रात 9:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम आज के संसार एक कार्यक्रम केंद्रित होगा पाठ का तीसरे पद। रात 10 बजे से मेरा छायागीत आलोचन सर रेणु बंसल का प्रस्तुत करता राजेंद्र नेगी। रात 10:30 से

उससे आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जी जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र जी सोचने लगते हैं कि कहीं धात्री प्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाए और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

संगीत कविता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत प्रकृति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी बेटियों की चर्चा की जा रही है। आज प्रस्तुत है राग भैरवी। नमस्कार श्रोताओं, मैं महाराजा स्वाति तिरुनाल के हिंदी रचनाओं के बारे में कहती आती रही हूँ। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और इसका समापन मैं राग भैरवी में एक बंदी से करूं तो बहुत ही उचित होगा। कल भी मैंने भैरवी में महाराजा स्वाति तिरुनाल की एक रचना सुनाई थी जो भजन के रूप में था। आज जो भैरवी कृति सुना रही हूँ वो ज्यादा काल में है और ज्यादा प्रचलित है। मैंने पिछले अंक में कहा था कि श्री पद्मनाभ अर्थात विष्णु महाराजा स्वाति तिरुनाल के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वे शिव पूजा से दूर रहते थे। ये जो कृति मैं गाने जा रही हूँ न केवल काशी विश्वनाथ जी के बारे में है। स्वाति तिरुनाल कहते हैं, चलो मन तुम काशी, जहाँ सुंदर और पवित्र गंगा नदी बहती है, पंडित और साधु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं और जहाँ त्रिभुवन पालक श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। विष्णु भक्त हो या शिव भक्त, स्वाति तिरुनाल कहते हैं, भजले इन दो स्वरूप रहिए अविनाशी। तो श्रोताओं सुनिए महाराजा स्वाति तिरुनाल की भैरवी राग में रचना

मैं आपको कर्नाटक रागों के बारे में और बाकी करनाल महाराजा की कृतियों के बारे में कुछ बातें बताती आई हूँ। तो इस श्रृंखला का समापन यहाँ करते हुए मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, जरूर लिख के बताइएगा।

0: जानते आवाज से मना रहे हैं। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राज ठहरी।
1: विविध भारती के संग्रहालय के पास इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपम।

सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

justicia divina.

0: जीवन के साथ एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
1: धीरे धीरे पीछे घूसते हुए

0: सजीव प्रसारण में आएंगे। अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे खुशियों के बीच के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनेगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पर तुम हम है राही प्यार के सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं

completamente, o al

शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोर्ट मिसोल शेरों होर्मुज दर्जन मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पोर्ट पर लगभग 2

parce que avec Abraham

विनी होकर 64.3 प्रतिशत पर पहुंचे हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति जो मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचे थे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यु मिन आंग हलाइन के लिए पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

Salud.

सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19

विशेष गहन पुलिस पर एफआईआर शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी।

19 आशा क्या है? दशकों से परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम सब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी

उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका है। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं न कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हम एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर सभी परिस्थितियाँ किसी के कठिन और प्रतिकूल क्यों न हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि

जीवन आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी व्यक्ति को उसके जीवन की बहुत कठिन समय में भी सफाया दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिल दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है।

सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, सफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कृपा

consider that.

对啊，所以

1.08 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब जुड़ रहे हैं वास्तविक सेवा से। कार्यक्रम की गूंज

को प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। 19 दिसंबर सन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ समुद्र तटों, सांस्कृतिक विविधता तथा पर्यटन के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा, उनका गाना जावेद अली की आवाज़, रफी बालम के बोल, देवी शिव प्रसाद।

Number one.

प्रधानमंत्री ने भारत में जिस दौर क्रांति का आगाज

शब्द कहते हैं। इसलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है स्वयं सचेत ग्रो लाइव।

से निभाए दिल में ढाई बजे।

Tragedy. Sin. This is how people

लिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना आवाज़ें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की गौतम मलिक के बोल और सर अमित।

जबरदस्त के लिए दखल कर लिया आक्रमण करते चित्र लोग और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेश पर जहाँ कुमार की आवाज़ पुनर्वस्त लिखा से और अपनी बजट यह बनी

0: और 50 में एक जीरो लिख रहा है 500 ने बताया
1: ये तो बहुत बुरा हुआ सॉरी
0: एक बार ये लिखने वाला खाली भाई मेरे हाथ में आ जाए मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट निकालूंगा देखना
1: मेरे को मालूम है किसने लिखा है
2: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई।

वही उन्नीस सौ पचास को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहाँ जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मोन्जी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर त्याग कर रहे थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन शे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहाँ उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने में रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978

tour prestigieuse, Paris,

परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर दिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से

चावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश चावल एक गुजराती

चावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश चावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्रॉफर्ड के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश चावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश चावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजी का परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश चावल और स्वरूप संपत्ति

0: हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं तो वो है बजरंग पठानी, नसीरी सिंह शाह और ओमपुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 वाली फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए, कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: इस पर कौन सी गाड़ी पहनी है?
2: पता नहीं, उनके नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि सिर्फ कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग, इस वजह
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा

0: bırakın.
1: Bak, bak, bak.

सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। पर इस मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म।

और विनय परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है मिस्टर मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की,

अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में

सुन कर दादा भूल भुलैया वेलकम मेरे बाप पहले आप की दरअसल और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में।

0: तरह तरह के खाने तो तुमने क्या क्या कर रसोई घर में खाए, उसका पैसा कौन देगा?
1: साल 1994 में परीक्ष रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म स्तर के लिए उन्होंने जीता कई

सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय है। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाम

возвышен.

0: के कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुनना न भूले। उजाले उनकी यादों के 31

के मंच खबर हमारे वेबसाइट aakashwani.gov.in पर। नया भारत आपका आकाशवाणी। रसल की महफिल में हम आप सभी श्रोताओं को और कुछ खास सलाम वो है जो हमारे बारीक से बारीक दिखती है जिस पर हम पार्टी की सुगंध महसूस कर सकते हैं समा सकते हैं। आइए इन ख्यालों के साथ हम आपका एहसास करते हैं।

सारा वैसे होगा कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के सफर में आपके साथ होंगी आपकी दोस्त फैमिली।

हम कभी बरामदे या बालकों के लिए

अच्छी आवाज बनी। कुमार की दोस्त की संग दिया था मीत ब्रदर्स ने। भीषण गर्मी और लू से बेहाल झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने जमशेदपुर समेत राज्य के 20 जिलों में एक दिन तक आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में पूर्वी और मध्य भारत में दो महत्वपूर्ण मौसम प्रणालियां सक्रिय है। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की

जरूर सुनें। दुनिया के महान नाटककार शेक्सपियर के ये शब्द हमें दिखाते हैं कि संगीत प्रेम के कितने करीब है। संगीत हमारी रूह की वो जवान है जो जीवन को यही वजह है कि सदियों से हर खासों आम को संगीत से लगा रहा है और बड़ी तादाद में लोग संगीत से जुड़े हैं। पर संगीत बनता है बहुत सारे वाद्य यंत्र से और ये वाद्य यंत्र को किस तरह कहाँ उपयोग करना है और कैसे एक गीत को सुरों में लाना है ये करते हैं संगीत। संगीत से सभी गीत को साधे पर उतारा जाता है किसी खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेस के लिए सुन के साथ ही एक खूबसूरत सा गीत अंदर आ रहा है। इस नाते मनोरंजन की कुछ कानून की पत्रकारिता के बारे में बने रहिए हमारे साथ कल। नमस्कार जनसेवा में आगे।

mettre la place. Ça va être plus maître, qui nous sera présenté de votre mère Saint-Jean. Et si c'est une vache, ça va être le bûcher par les deux votes qui peuvent s'éclamer, qui nous sera présenté comme le caractère au 18 mars 2020. La raison pour le caractère de la vente du théâtre. Si vous avez été pour l'open de cette conversation de façon d'attirer, il est समाज को सही जानकारी प्रदान करने, जनमत को जागरूक करने और लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। हिंदी पत्रकारिता में देश की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और जन जागरण में अमूल्य योगदान दिया है। आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आए हैं, लेकिन सत्य, निष्पक्षता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की सबसे बड़ी परिवर्तनों को नमन करें जो हर परिस्थिति में समाज तक सच्ची और

स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। इस सफर में आज आपका साथ है आपका अपनी दोस्त इस्लामी किसान। और अब श्रोताओं मनोरंजन जगत की बातें करें तो आज है बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेत्री परेश रावल जिनका है आज जन्मदिन। अपने प्रतिभा के लिए मशहूर परेश रावल का आज जन्मदिन पर उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी गुजराती और तेलुगु सिनेमा में 240 से अधिक फिल्मों में हास्य गंभीर और नकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 30 मई 1950 को मुंबई महाराष्ट्र के एक गुजराती परिवार में जन्मे उनकी शिक्षा नरसिम्हन जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से हुई। उनके द्वारा निभाई गई फिल्में हेराफेरी जिसमें आपसे के उनके किरदार को एक कल्पना है। अन्य यादगार फिल्में हैं गोलमाल सरदार नाम नामा मालामाल इतनी। साल 2014 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। साल 1994 में फिल्म सरदार और बर्ड खोखरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें दिया गया। और आवारा पागल दीवाना जैसे फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय अभिनेता हास्य कलाकार निर्माता और राजनेता है। इन्होंने हिंदी

se tam to a když jsme to vyplnili čtyři, roky dřešku manifestany. Multiple jsme chtěli roky, जो कि एक बीमारी है जिसकी जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके प्रभाव को पहचानना और मरीजों को समाज में उचित समर्थन और समावेश दिलाना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS एक क्रॉनिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच संकेतों को देखने वाली तंत्रिका तंत्रों के नर्व फाइबर्स जो है के चारों ओर माइलिन नामक एक सुरक्षात्मक वसा की परत होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम इस परत पर हमला करके इसे नुकसान पहुंचाती है, इससे संचार बाधित होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं, व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और तंत्रिका

की परत होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम इस परत पर हमला करके इसे नुकसान पहुंचाती है, जिससे संचार बाधित होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं, व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और तंत्रिका क्षति के स्थान पर निर्भर करते हैं, जैसे अत्यधिक थकान और कमजोरी, चलने फिरने में कठिनाई और संतुलन बिगड़ना, हाथों और पैरों का सुन्न होना या झुंझुनाहट, देखने में समस्या या धुंधलापन या मूड स्विंग। वर्तमान में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई पूर्ण इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन सही समय पर निदान और उपचार से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जटिलताओं को बढ़ाने से रोका जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन

पर डायल करें, यानी 1947 आपका कस्टमर की शिकायत या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1947 पर आप शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आज शहर के रविंद्र भवन में बांग्ला के प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम की सिविल सोसाइटी रविंद्र भवन में मनाएगी। मौके पर कवि को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे का। मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह और शाम 6:22 मिनट पर और कल यानी 31 मई को सूर्योदय होगा 5:01 मिनट पर। दिन में आसमान साफ रहेगा, शाम में बारिश की संभावना है।

रहेगी। हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में, समीर की बोल है, संगीत है

and that different kinds of things.

0: किरण बोली, हंसी की कलर जादू की नहीं, बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो गुण विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बस काट पर दो गुण
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। दो जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जाएंगे दूसरों के बीच।
2: बधाई हो बधाई
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा दो जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस चुका

happen to be ours. We shall

स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजीत द्विवेदी। दोस्तों आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पर पोस्ट किया है तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए आ गया है मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आपासा, आलस बढ़ती रहा। मैंने कहा जब तक सूरज आगे रहेगा इसके लिए अपने जीवन बन जाएगा। मन सोचते रहे चाहे वो दिन क्यों आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफर में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं हमारा तो दिन सुबह से नसीन बन पड़ा है, सुबह से मौसम अकेलियाँ कर रहा है, कभी धूप कभी छांव कभी तेज हवा हल्की सी बूंदाबांदी, इस मौसम का क्या वर्णन करूं। मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है निकला, अब दिल पर काबू है निकला। दोस्तों आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है।

समझता होता है। उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि

काफी अलग।

तो मौसम सुहाना हो गया जी हाँ, शाम का वक्त हो रहा है। अगर आपको बता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है, तो आप यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आपकी इबारत, इसे पढ़कर मन में चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है, जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है, जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबो कर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को बहुत ही भावुक और प्यारा

ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो इसलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो, इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल रविंद्र सेन का संगीत। तो हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध भारती केंद्र से एफएम स्टेशन में आपके बहुत पर कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रात्रि केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

Trovarlo

स्वभाव है। संतोष मतलब मन से विकास का मौजूद बनाने में

सुरक्षित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें

है, सभी दुखों से बाहर आ

आकाशवाणी जमशेदपुर का बेहद भारतीय केंद्र हैं। बेहद भारतीय

बनने कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, जरूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिक्सी में ही आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथ ही ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूँगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू कुछ तो खा लेते हैं, और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूप होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो

स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में ज्यादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। जैसे आगे बढ़ते हम और बैराज फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकौड़े बन

साथ ही लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी सी चटपटी भाजी बहुत पसंद है। और तो मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी परवरिश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसके अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है। सबसे तेल फिर उसमें थोड़ा जीरा सौंफ और कड़ा धनिया और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भूनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, जाकर उसको खिलाना और

खुशी होती है। आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर 1 इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोशी की आवाज में निकल हुआ गाना है।

सिर्फ अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उबला आलू और दही का रायता फ्राई में फिंगर चिप्स हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है। समोसे तो आलू के बगैर बन ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रही है कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना। कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया। विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए याद

संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक का राजा है। ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब भी मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उससे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज हमें और भी लग जाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का अंदाज है इस के बारे में

पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक बात ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद शहर की आलू होती है वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक बात ये लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथ ही लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में भुन कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के

होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब रात तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में भूज कर कढ़ाई में डाल देते थे, कितना मीठा और टेस्टी। वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। तो गाँव में गन्ने की चराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भत्ता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी रखती है, सूखी रहती है, हम लिख जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं सिर्फ चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे दिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम का संगीत है,

सब्जियों का राजा कह सकते हैं, ऐसा ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव बना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं, सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी, आलू, मटर, आलू परवल, आलू कटहल, आलू टमाटर, आलू किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में, आलू पराठे में, आलू पकौड़े में, आलू और साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है जहाँ आलू उगते हैं वहाँ आजीविका फलती फूलती है, और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूरी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं सिर्फ 10-15 दिन के लिए जाती थी, उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे बिस्किट था बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका मिस्टर खिलाड़ी, फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं और देव कोहली के बोल हैं अनुमति।

दादी से उच्चारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथ ही ये भी लिखते हैं कि एक ही इबारत रहती है हम बहुत कुछ और कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। इस सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात ये है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे

के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है।

19 आता क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आपको हम तक पहुँचाने क्यों हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है, फिर भी हम ये कह सकते हैं अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में

का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में

पद के साथ हर मुश्किल से उबरने का

से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है, तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रह

का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करते हैं और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं या चुनौतियों से जूझ

किरण जीवन की मुश्किलों, सफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: optician sin duda 2.038 महिला मन के राष्ट्रपति ओम आउरी 95 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में। नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने के बाद क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक Operation Sindoor की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें तेलुगु केवल 28 से चौबीस में आ रहे हैं। इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने का है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिक नेतृत्व को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस दृढ़ संकल्प से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर

संस्थान के संघीय संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो ब्रिगेडियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय

0: सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1.8 करोड़ कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश किया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1.40 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 750 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति ने गोवा को एक आदर्श महसूस किया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। एमपी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा।

0: a nechtým rečetika všetký nevyšší bola, ale také mohli skupri a tak len sa mať náš penží.
1: Ďakšie vady zrobdy mrmu a prehajmenty merim do modiny, govorite sa na dieska na dieke ľudovko, čo sa nebude. Dnes na mať aj akáčovanie sa presnáre skieda režim hluta, do sa mať sa dáne pili a hmare social media handles aj a ja nevším si po follow kar sakte hne. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेस ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल हो जाए तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शामिला संवाद में श्री हेक्सेस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास देश और दुनिया भर में पर्याप्त समय भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ दो घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कुछ स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मारखंड

क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।

राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है

0: बच्चों की रंगोली हसी की झलक यादों की लहर बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जुड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के बीच। जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिन की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बनाकर के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, एसएसपी हाई के बोल संगीत है।

0: अपनी सभी की सुपुत्री मिसुल कबीर साझा कर रही है अपने पिता कवि कबीर के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई

की आवाज में रविंद्र कृष्ण के बोल श्री रामचंद्र का संगीत।

0: कुमार और सुमन कल्याण पुर की आवाजों में मशहूर सुल्तानपुरी के बोल संगीत है एच डी बर्मन का।
1: हाँ

सुनाते हैं।

0: आए थे। अब उनके पास से जो अफीम बरामद हुआ है उसका कुल वजन था 1 किलो 113 ग्राम।
1: जनता

0: खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो 3 दिवसीय चलना 31 मई को इसका समापन है। उसमें लगभग 16 जिला से टीम आई हुई है और हो सकता है कि और 2 टीमें शिरकत करे। गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जामतरा जिला को मिला
1: और इसके साथ

0: की रंगोली खुशी की झलक की जादू की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जुड़े रवि भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सचिन सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर। दो जून को
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष अतिथि। दो जून सचिन सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच कृष्ण के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।
1: कल शाम 6 बजकर 30 मिनट पर इसी चैनल पर सुनिए कल

समय पहले ही रामलीला मैदान प्रसिद्ध से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, श्रुति त्रिपाठी, मनु मनी, शिवांश, अनुपम और अभिजीत थे।

तो सुनने के लिए परमेश हमारे दिन से पहले लिखे जी ने वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता गोलू

सीए जोश रूपांतरकार डीजी वासुदेव निर्देशक भारत रत्न भार्गव सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: मैंने अखबार में पढ़ा था वियतनाम के युवती को सेक्सुअल रेप में फंसा दिया, तो आप वही जज हैं ना? आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है प्रथम पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही है।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस पक्ष में पक्ष को दोषी मानते हैं?
1: परिस्थितियों का है जो मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में

Jesus

Croatia. Really? You say वो बदल आ जाए क्या? कैसे करते? किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है। फिर भी थोड़ा बहुत बदल लेता हूँ। बहुत ही सही समय है। एक तरह से इसको मेरी जान बच गई है। अच्छा, अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुर। ऐसा तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए हैं।

0: इसकी बात पर ध्यान न दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना तो सिक्का कर सकता है।
1: अच्छा, जस्ट वर्ड हो

करती हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका के फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे। तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हुआ? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले

0: देखो तो जाएंगे आप तो इस हालत में अच्छे थे जब की यादाश्त है तुम्हारी अपनी। हाँ मैंने परिचय तो करवाए नहीं लॉरेन मेरी पत्नी से। हाँ नमस्ते नमस्ते तो मैं देखते ही समझ गया था। सब बात रहने दीजिए। अब तुम पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? जो भी जरूरी होगा जरूर
1: करूँगा।
0: मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही दे दो। मैंने अपने को डेजी के सपोर्ट कर दिया। डेजी तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारे हर बात की तरफ ध्यान देता है। कौन सौभाग्यशाली? लेकिन 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है। खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है जिस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो जो भी हो भाई डेजी तुम्हारे कंप्लीट पिकअप करना होगा। अभी तो बाल बचा रहा हूँ बाल जाओ ठीक हो गया।
1: भगवान की बड़ी कृपा है कि डॉक्टर

gift out.

那么也是得去不改变生活习

0: है शमशान उठाकर शांत कर लूं और तुमसे माफी मांगने के लिए मैं दौड़ दौड़ आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चले मैंने आवाज दी, मगर तुमने मेरी तरफ देखा नहीं। तुम कौन हो? ये मैं तुम्हारी अपनी कैसी बात नहीं जान गया।
1: आप कहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करती
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है।

की विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका असर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। खास में वो कब सारे

现在在。

0: होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हें नहीं दिया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो गया। मुझे लगा कि तुम्हारी मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं कहीं जिम्मेदार हूँ, इसलिए उन्होंने सब किया। फिर एक दिन सुना हूँ तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए।

0: अरे आ जाओ डॉक्टर, सारी रिपोर्ट आ गई ना?
1: हाँ बेटी, सारी रिपोर्ट आ गई।
0: कुछ खास बात बताइए डॉक्टर?
1: देखिए, मुझे कैसे दुख हो रहा है,

going to talk about the Jude piece.

0: से लैटेक्स अग्नि चक्र का पहला भाग, ये था मलयालम लैटेक्स अग्नि वलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोश, रूपांतरकार डी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
1: दो जुलाई सभी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली।

about it.

0: कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुना ना,

0: Guarda che te ne dici che capisci. Ma io vorrei dire,
1: allora, insomma, aspetta, toglielo. E che ho preso un pochino. E che bello, bravo, ti lo sacca. Se non, capi che ha fatto il figlio di lei, eh? Ye kis film ka dialogue tha zara vichar kijiye. Ha wahi film jisme humne holi ki dhun par bhi naacha hai aur kaha ki ek pyari si ladki ki chuhal baaji masti aur bahut sari chaitani ko bhi dekha hai aur wahi masti ho badi pyari si khoobsurat se humne ke hamare beech mein hai aur naam hai sadhna singh ji. Main man se pyare se dil bhar ke aapka itne pyar se swagat karti hu. Thank you, bahut bahut dhanyawad. आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है.
0: हाँ बिल्कुल,
1: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं. गुंजा जो है वो बहुत बदमाश की है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है, कहीं पानी गिरा के चली जाती है, कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है. और वही गुंजा जो है वो एक समय से आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए. तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है.
0: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश प्रमोट करने वाली वो मैं वही हूँ कि उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो समझदारनेस है या किसी के लिए फील करना है, वो अपने आप उसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है. तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ, जिसकी सबकी अच्छी जगह जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ. पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस हो जाते थे कि यार मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं. आज वो वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी. और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी भर गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई. और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी और मेरे दादा जो मेरे थे डायरेक्टर गोविंद मुनीर जी, वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो सब बताते थे कैसे कलर से आया उसको. सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के भाई को सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो. और जो कुछ खिलाई अभी भी करती हूँ वैसे काम. यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियाँ कर चुकी थी और अभी भी कर रही है और गुंजा रहे. सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, जो उनके दिलों को छू रही थी. और उन फिल्मों के बीच में तमिल से ब्यासी ने नदिया के पास अपना एक अलग मुकाम बनाया. मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली

0: तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। जब दो दिन खत्म हो गए मुझे लगा एक्टिंग नहीं करी एग्जाम में, तो बोलते बस तुम देखना पड़ते थे किसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है। लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया, तब जाकर उनको लगा यही मेरी गुंजाइश है।
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तब क्या चाहती थी आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप अभिनेत्री बनेंगी, तो साधना जी क्या बनना चाहती?
0: मुझे फैशन तो सिंगिंग चाहिए था, तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे कानपुर में मैं थी, तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोलते वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ। पर माय टीचर साधना की, जिस वजह से मेरी बड़ी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती थी स्कूल में भी, ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना, तो जब कुछ क्योर्स होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी। हाँ तो ये था रुतबा था मेरा अपना,
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि गाना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हमारे श्रोताओं को सुना। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके आचार्य का?
0: देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने गाना गाया उस समय तो रेडियो होते थे, और मेरी मम्मी ने फिर मुझे फोन बुलाया था कि बेटी को गाना गाने की बेटी गाना गाती है, वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर गाने लगी। उस समय बस आवाज़ अलग थी मेरी, जब आप 50,000 लोग खड़े करते थे उन तक पहुँच सकती थी
1: इतनी बुलंद,
0: हाँ बुलंद आवाज़।
1: तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको भारतीय परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: स्कूल में जो होते हैं वो भी
1: करती
0: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ही सीखू।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक कथी भी बहुत जबरदस्त, लक्ष्मी राजी की बहुत फेवरेट ये थी गायक।

0: क्यों वो भी सभी तरह बता रहे हो, ये सब बद्री जी थे जी, हमारे डांस डायरेक्टर जी, गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है पूरी ट्रेन डांसर थी, माँ तो नहीं थी, उसने स्टेप है ना वो मुश्किल स्टेप ऐसे करके काली सीधी और घूम के आना था, मुझसे हो नहीं रहा था, तो माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कि चेंज नहीं कर सकते इसमें, तो चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं तीन चार दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में और एकदम ठीक कर दिया मैंने, एक डंडे में डांस हो गया। तो ऐसे भी होता ना कि दांतों के बूट है, लाठी के बूट, लाठी के बूट मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी। बद्री जी को धन्यवाद थी उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया, क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
1: हाँ,
0: दांतों में देखती रहती हूँ मटक पटक के दांत, कोशिश की तो हो गया।
1: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने, हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करता हूँ जो डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी दरिया के पार फिल्म में
0: कल शाम 2 बजकर 16 मिनट पर इसी चैनल पर सुनिए आज का विशेष मैनेजमेंट।

0: volver a eso, yo diría que no más. Pero me dice que me dice. Yo quiero vivir lo que más. Un hombre con más que me merece todo. Porque si me están sabiendo lo que me merece, yo diría que es posible.
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं? खुशहाली
0: मुझे लगता है कि कोई बात ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे

0: सपोर्ट भी उठा के माँ बाप का पैसा ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाए, लेकिन ये सोचता है कि मैं मर जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते, फिर आप गलत राहों पर चलने लगते हैं।
1: तो थोड़ा सा खुद को परख के आया था आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक ईगो भी सामान्य है लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
1: हाँ,
0: वो भी अच्छी ही चलता है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी। लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ भी आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: हमारे समझ से बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग तो अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
1: तो उसका संगीत कितना
0: खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।

सब प्रस्तुत हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई है, मस्ती के साथ सब करती गई है और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज की युग की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर थर्टी। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में

Don't go Irish secret just play. Even King went again. The human said he was again. The woman was still cleaner. Or what if it was a church or rosa. Or dancing would be editing what he is. Or editing seriously Monday. So 3 minutes of the young girl. Question me, gave me a thing to cut out, what thing to cut out. If you have a color, production is good, low hair, a real young about my production. Don't see this with DK, must be the service ticket. But Bucky just started, I was opening it when Smith did that. I said, American dream, look what I got, but if you can't get it, it could be difficult. तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे फैक्ट्री रहते थे फैक्ट्री रहती थी मतलब पहले ऐसे ही होता था डैड के साथ में खा रहे हैं साथ में जब भी कर रहे हैं कुछ टीम की बात भी कर रहे हैं अभी कुछ टीम हो रहा है उसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं बहुत सी चीज है लेकिन आजकल शॉर्ट देते लोग मैंने भी तो खा ली रहती थी क्योंकि टाइम निकल जाता है बट रोल अच्छा था फिल्म अच्छी थी तो एक लाइन बोलती हूँ ना हमें नहीं चाहिए शॉर्ट हम बहुत हॉट है तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे नहीं लगे आप बहुत हॉट है तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के बाद नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने जी क्योंकि कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी बहुत सारी चीजें उस दौरान लेकिन ये है कि एक शंकरा वर्णम फिल्म आई थी जी विश्वनाथ जी साउथ के थे उन्होंने ये फिल्म बनाई थी उसका नाम था शंकरा वर्णम जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो सिस्टर में जी तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद मुस्लिम मुझे बोले आबिद करम हाँ तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं तो मैं क्यों जाऊँ तमिल मुझे समझ नहीं वो वही पढ़ती रह जाऊँगी मैं सब दिखा लेकिन वो ले गए और वो बस फिल्म शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रही मतलब जब फिल्म

0: मुझे फोन आता है कि ऐसा ही हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं
1: सेम फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म
1: तो
0: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल उनका कोई भी रोल है मैं जुड़ना इसी फिल्म से तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पीछे हो जाता है वहाँ पर हाउस में उन्होंने बनाई तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला थोड़ी आंखें अच्छी हैं बहुत लेकिन होती है हाँ तो उनको और इनहेंस कैसे कर सकते एक्टिंग के लिए एक बार पलट झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है तो वो सारी चीज़ें वो बताते थे ना तो ही जो अभी पास्ट हो गए उनका मंदिर होता बना है तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं जो कि बार के बाद ससुराल थी ना
1: उसके बाद
0: हाँ तो मस्ती हूँ की बस और वहीं भी मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे हस्बैंड जो आज हैं उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी अच्छा लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर लूँगा तो वो फिल्म थी उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही

0: मैं लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया है
1: हाँ.
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है. तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है. उसने अच्छा रोल दिया उसने दूसरी लड़की ने और उसका नाम है शेफाली भूषण. अभी भी उनकी मराठी फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल. हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन. सब लोग शिक्षा दिखा रहे हैं अब मेकअप मैन की जरूरत नहीं है. हाँ सब मुँह से काम कर रहे हैं उनके काम हाँ पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं. फिर मैंने अनुराग कश्यप वो मुझे ढूंढ रहा था कब से. उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी अभी करके हूँ. तो कुछ देख रहा था उसके ऊपर कोई साधन की कहाँ है आजकल तो उन्होंने बताई ना है. उन्होंने मुझे बुलाया मैम आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ. तो वो फिल्म थी फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत.
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब

0: मेरे फादर नॉवेल की मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर वही लड़की हीरोइन

रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने थे। मैं जानना चाहती हूँ इसके बीच जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए

0: की फिल्म है और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को गुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे। कौन लिखा हम तो सब गाते हैं जी, बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो वो इतनी रोमांटिक थी ना दोनों की और दोनों का जो एक प्यार था फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा, तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे गए?
0: हाँ, रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था? तो
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना ही अच्छा, अगर आप बहुत खूबसूरत गाना और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करते हैं तो ये गीत आपके लिए हम सबकी तरफ से बहुत प्यार से।

0: जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगे शायद।
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है कि और लगता सुनते ही रहो आप, चलते जाइए म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना और हेमलता जी की इंटरव्यू और फिर वो लाइव गाना देखना और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में, एक साथ एक साथ, बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर रिटराइज होगा, ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे,
1: ये हम मैं तो प्रणाम करती हूँ। ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा कोई गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुने,
0: 30 गाने
1: 30 गाने में, और सुना कर थी पसंद नहीं है अच्छा, और ये और वर्ड उसी टाइम लगा रहे थे, यानी कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा थोड़ी थोड़ी नहीं लग रहा ना ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी उसे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना
0: जी।
1: तो मुझे तो मतलब ये आदमी इतना गुणी

0: चाहिए और सुंदर शुरू कर दिया। तो
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते, तो लिखते नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राजबाबू राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोर किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवा था। ये रविंद्र जी उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता था। वो तो शेरनी थी मैं तब, चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है। तो आई थिंक वो अक्षर बन में सब कुछ सीख गई। अल्लाह बन गए थे ना, ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
0: ये बात है, मैं दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना करो बस उसके बाद जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार हो, उसके लिए भी तैयार हो।
1: अच्छा खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुँचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए थे?
0: नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे, अब इतने बड़े खानदान में शूटिंग भी करेगी। इस चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था, नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए थे। लेकिन जब ऐसा

0: बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो। मैंने कहा लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना, जो भी इन लोग को किसी को शौक ही नहीं हुआ, ये बाबा ने बोल दिया। मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों के लिए
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिस

0: हवा मत बना के रखो,
1: यानी आपका मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों के लिए
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी।
0: तो यहाँ भी बस खुश रहे
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के शहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत में है?
0: नहीं, मेरे बेटे तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना
1: वो बिल्कुल अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी,
1: को लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी। जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी पॉइंट टू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही रह गई।
0: हाँ,
1: तो समय वो चले
0: वो
1: मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीज़ें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, सोच करती है, टीवी वगैरह जो भी है ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती हूँ।

के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे यहाँ के रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करूँगी, मुझे कॉमेडी करना, मुझे वो साइड एक्सप्लोर हुए नहीं। अच्छा हाँ, तो शायद उसके साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर सर्टी जी इसको ने मैसेज भेजा कि मुझे ना रोने धोना ये माँ के लिए बुलाना नहीं तुम्हें मुझे भी जो बुलाना

और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूँ, कुछ दिखूँ, कुछ बोलूँ और एटमोसफियर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुम सही गवा लेते तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने बनाने की कोशिश करती हूँ। आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।

0: इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर दो घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहिए।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे हैं दोनों, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं। जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ ऐसी चीज है जिससे औरतों का बहुत कम ख्याल होता है, जैसे उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दो, उसको भी खिला दो, उसको भी खिला दो, बचेगा तो देखती हूँ। और कोई खेद भी नहीं करती हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समझ पाएंगे, ऐसे टीचर तुमको फेस कर पाएंगे जो आती है कभी जो भी करना है ना वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत का ध्यान दें, 50 में और सपोर्ट हम लोग की जिंदगी खत्म हो गई तो वो जिंदगी शुरू होती है, तो इसलिए आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने पहनने से मुझे याद आया है मैंने ब्रांड भी शुरू किया है। अच्छा हाँ, एक कच्चे धागे करके और साड़ियाँ वगैरह, मतलब अभी सब कुछ अच्छे से सब देखते रहें। और वो का दाम है, ये देखी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाया, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी फिल्म आ रही है दसवीं पहली जी, और जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की बहुत सारे फेस्टिवल में जा चुकी है। और न्यूयॉर्क में तो सेलिंग हो गई।

0: चल मैं कहती है कहीं जरूर से हम सभी विद्यार्थी परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंडा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाश है, तो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया, अच्छा लगा मुझे भी, अच्छा लगता है विविध भारती से कहना चाहिए, आत्मा जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

感觉是要把这边。

Yeah.

Nikki Harrison.

जमाना का प्रसारण होगा 7 दिसंबर 10 बजे पर और कार्यक्रम केंद्र में सुनेगा 7 बजकर 45 मिनट पर। हवा महल ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। कार्यक्रम चित्रलोक 8 बजकर 15 मिनट पर और समाचार संध्या 5 बजकर 45 मिनट पर।

Thank you.

तीन जमाने के लिए श्याम बेनेगल साहब ने वहाँ पे एक डैम था उसको खुलवाने के लिए कहा। वो नदी तकरीबन हमेशा सूखी रहती है, लेकिन डैम खुल जाने की वजह से, डैम के वो लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाने की वजह से तकरीबन एक डेढ़ घंटे के लिए कुछ पानी उस सूखी जगह पर आ जाएगा, जिसे हम बाढ़ का इफेक्ट दे सकते हैं। तो साहब हमने वो सीन शूट करना शुरू किया, लोहे के दरवाजे खुले, गाँव के ही कुछ 200-300 लोग थे जो हमारी मदद कर रहे थे ये सीन शूट करने में। तो सीन ये था कि मैं और ओमपुरी साहब जो उस फिल्म के हीरो थे, हम दोनों इन गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें इस बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब एक डेढ़ घंटे में ये सीन शूट हो गया, दो कैमरे लगे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और ओमपुरी साहब उसी पानी में तैरते रहे काफ़ी देर तक। अचानक तैरते तैरते हमें लगा कि अब हमें बाहर किनारे की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन है, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पानी का बहाव उल्टा है। मैं किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझको लोहे की तरफ दिखाई दिए, यहाँ से पानी गिर के नीचे आता। तो मैंने लिए चिल्लाना शुरू किया। मैं चिल्लाया तो वहाँ पास जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ शायद। एक सेकंड में बिजली की तरह मेरे दिमाग से यह ख्याल गुजरा कि अगर मैं इस वक्त किनारे पर नहीं पहुंचता हूं, तो ये पानी मुझे खींच कर उन लोगों के दरवाजों के पास ले जाएगा, मैं उससे टकराऊंगा और डूब जाऊंगा। तो साहब तीन चार बार चिल्लाने के बाद कोई एक दो लोगों ने मेरी तरफ गौर किया, एक आध शख्स कूदा भी और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो फौजी भाई, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है, वैसे ही हमारे काम में भी, एक्टिंग में काम करते हुए बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो फौजी भाइयों, अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोर तो किया, लेकिन दूसरे वादे के मुताबिक आपको गीत सुनवाना।

audience

सारी दुनिया का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। बाद में 1989 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया संकल्प पारित किया

पर फोकस करती है। पहले साल की टीम की तम्बाकू या स्वास्थ्य के इस मुख्य स्वास्थ्य को चुने। साल 2026 यानी इस बरस विश्व तम्बाकू आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तम्बाकू की लत का मुकाबला करना। और निकोटीन इंडस्ट्री युवाओं को लुभाने के लिए अपनी मार्केटिंग में तरह तरह के आकर्षणों को शामिल करती है और युवा तम्बाकू की चपेट में आते जा रहे हैं। तम्बाकू के सेवन से तकरीबन 97 लाख और भारत में तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में तकरीबन 1.2 अरब लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। भारत में ये तादाद 20 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तम्बाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक बनाएं और दुनिया को तम्बाकू मुक्त बनाएं। तम्बाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो चुकी है। अब दिक्कत ये है कि तम्बाकू से होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं कि इन डॉक्टरों को सही सही हासिल करना बस मुश्किल काम है। व्यक्ति जो धूम्रपान करता है वो सिगरेट पर तकरीबन 3.3 लाख रुपए सालाना खर्च कर देता है। कल्पना कीजिए कि इतने पैसों से आप जीवन के कितने बेहतरीन काम कर सकते थे। छुट्टियों का आनंद ले सकते थे, त्योहारों का आनंद ले सकते थे, अपने घर को बेहतर बना सकते थे, अपने

5 करोड़ वयस्क लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और दुनिया में तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है।

छब्बीस दशमलव 7 करोड़ वयस्क लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और दुनिया में तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। भारत में सिगरेट या बीड़ी के बजाय गुटखा, खैनी और जर्दा का चलन बहुत ज्यादा है और वयस्कों में इसका इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत 21.4%, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तंबाकू में 2500 से ज्यादा केमिकल तत्व होते हैं जिनमें निकोटीन के अलावा कई कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक तत्व शामिल हैं। कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। 45% कैंसर पुरुषों में और 20% महिलाओं में तंबाकू की वजह से होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े की बीमारी तो बहुत ज्यादा तंबाकू की वजह से होती है। अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों में जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें इसके खतरों से आगाह करवाइए और उन्हें इस बात की कसम दिलाइए।

नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी की वजह से पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण हल्के लगते हैं, लेकिन अगर नजरअंदाज किए जाए तो हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब मौसम बहुत गर्म और उमस भरा होता है तब शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकलता है। पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में न पिए तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों और लंबे समय तक बाहर घूमने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन अक्सर देखा जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब होने लगता है, मांसपेशियों में एक्शन होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, होंठ फटना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, थकान, ड्राई स्किन और गहरे रंग की पेशाब है डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन अगर वक्त पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर हो सकता है। लंबे समय तक पानी की कमी रहने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है और इसका असर कई अंगों पर पड़ सकता है। इससे हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट एग्जॉस्टन यानी गर्मी से अत्यधिक थकावट, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी से

शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। इससे तेज बुखार, दिल की तेज धड़कन, उल्टी, बेचैनी, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत शामिल है। इससे दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्मी का स्किन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से स्किन में सूखापन आ जाता है। सनबर्न, जलन और होंठ फटना भी बहुत ही नॉर्मल है। कई बार त्वचा की समस्या शरीर में पानी की कमी का संकेत होती है। गर्मी में पाचन से यानी हाजमे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग बढ़ जाता है। दरअसल लाइफस्टाइल की वजह से डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोग लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, ट्रैफिक में सफर करते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय पर पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग पानी की जगह चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और शरीर को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। एक वयस्क इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3-3.5 लीटर पानी दिन

चाहिए जो कि एक कैफीन और सिट्रजीन है वो शरीर में पानी को बाहर निकाल देती है। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ ये बहुत अच्छे उपाय हैं पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तरबूज, केला, ककड़ी और संतरे जैसे ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पानी बड़ी मात्रा में हो यह आपको जरूरी तौर पर लेना चाहिए। हल्का भोजन होना चाहिए और वो भी ताज़ा, थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। जरूरत न होने पर धूप में नहीं निकलना चाहिए। सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सुरक्षित रहें। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि 25 साल से गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने अजमेर के टूर को पीछे छोड़ दिया। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के ऐतिहासिक दूसरे दिन पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में कमाल का प्रदर्शन किया और केवल 10.09 सेकंड में ये रेस पूरी कर ली। एशिया में इस सत्र का ये दूसरा सबसे तेज समय है। ये प्रतियोगिता गुरिंदर वीर और पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अजमेर के बीच 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक बनने

ऐसे ही अखबार 6 महीने में बंद हो गया था, लेकिन हिंदी के पहले अखबार के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और इसलिए 30 मई का दिन भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदंत मार्तंड शब्द का अर्थ है समाचार सूर्य या बाल सूर्य। 6 मई 1820 को कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र के रूप में उदंत मार्तंड शुरू हुआ था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल से निकाला था। आगे चलकर यह अखबार बंद हो गया, लेकिन सबसे जरूरी बात यह हुई कि इसने हिंदी पत्रकारिता की वृद्धि की। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके दोस्त

में और वे मेरे घर में थे। मुझे बहुत ही जरूरी है। मैं अपने इंस्ट्रक्टर से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये बाइक को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़की को दिखाना चाहते हो राइट। हाँ, तो मैंने कहा तुम इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, साइड में गर्म की भी आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल पोर्शन है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत कूल बनिए, कूल नहीं, हीरो ही पहनते ही हेलमेट।

आज आपको सुनाता हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूँ। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु कभी विचार तो करो, कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। सैनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है। इसका कभी भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। सच ने कहा, देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर सतपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु देखो वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई

と見つかれて、お互いと話した理由は増えると忘れて、あやさで帰りたか、女性、おしゃれ、バガージュはつまんじゃい。

प्रकार से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं? संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस व्यक्ति को अपनी न कर सके। उनको अपनी पुत्री की इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात तुम्हारे ही नहीं सकते, करके बोला। और जब मैं तीन बार विपक्षियों के हाथों मांगा गया तो तुमने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करे। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्तृत कर सकता। गृहिणी बोली, उपकार उपकार? यदि तुम उसको विस्तृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुखना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्तृत हो जाना ही अच्छा है। कठिन बहुत सी वस्तुएं

मुझे भी तुम्हारे सिर के तले से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से, तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपने तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। ऐसा मेरी आवाज सुनकर तुम प्रभावित हो? क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूँ, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, किंतु देवयानी तुम ही हो, क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसलिए परेशान किया? देवयानी बोली, क्यों नहीं, तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समझ करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो, शक्ति शिक्षा ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कृष्ण ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे मित्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली?

दर्शक हो, संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर के गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर रहे, मैं भली भांति जानता हूँ कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर, सच्चे हृदय से क्षमा कर इच्छुक हूँ। इस बात को सच जानना तुझे आघात पहुंचा कर मैंने अपनी कठिनाइयों को दूर कर दिया। क्षमा, तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है, वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भबक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोड़ा और चिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी? तुम एक पथिक के रूप में यहाँ आए रूप से बचने के लिए, मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूँ, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधेरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार

इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी अभियान दोनों कहानी श्रृंखला के अंतर्गत संग्रहित है। प्रस्तुत करता हर्षवर्धन गवई।

हमारी भूमि है, वहां जितना

0: at some point.
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद की सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: तो सुनना न भूले। थैंक यू।

0: पर आप उपयोग किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश

that was amazed, because he saw you for all of you.

தெரிகிறது.

तो इंडिया जीतने भी होने जाए। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल

चेहरा देखने लगा फिल्म हम दिल दे चुके शर्म के गाने तड़प तड़प। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे।

के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। किसी के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी, क्योंकि मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को

0: reconciliation of measures that they've done, कुछ इस प्रकार व्यक्त किए
1: देखिए इसको पूरे मुझे सोचा कि मीटे बहुत जान सकती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज एजुकेशन में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एक से बहुत ज़्यादा लेना

অন্তর গাছকে সাবালে জিততে নিয়ে বো খাস তো সে জানে যাবে युवा दिनों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए

ਦੁਆਰਾ ਦਿਲੀਪ ਸੰਪਾਦਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

0: मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की, जिसमें गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

प्रातः 5 बजकर 15 मिनट तक देखभाल के साथ